धुली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: गुरुभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
1: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। प्रथमं तस्य नमनं कुर्मः। श्लोकः एवमस्ति।
2: पठत संस्कृतम्
1: वदत संस्कृतम्
2: वदत संस्कृतम्
1: पठत संस्कृतम्
2: पठत संस्कृतम्
1: वदत संस्कृतम्
2: वदत संस्कृतम्
1: लसतु संस्कृतम् चिरम्
2: लसतु संस्कृतम् चिरम्
1: गृहे गृहे च पुनरपि
2: गृहे गृहे च पुनरपि
1: लसतु संस्कृतम् चिरम्
2: लसतु संस्कृतम् चिरं
1: गृहे गृहे च पुनरपि
2: गृहे गृहे च पुनरपि
1: पठत संस्कृतम्
2: पठत संस्कृतम्
1: वदत संस्कृतम्
2: वदत संस्कृतम्।
1: अस्मिन् गीते गीतकारः वदति, यूयं संस्कृतं पठत, यूयं संस्कृतं वदत। संस्कृतभाषा पुनः गृहे गृहे लसतु, गृहे गृहे सञ्चरतु, पुनः व्यवहारभाषा भवतु इति।
2: पुनः व्यवहारभाषा भवतु? किं संस्कृतभाषा पूर्वं व्यवहारभाषा आसीत्?
1: आम्, आसीत् एव। पश्यतु, व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमे आह्निके महर्षि पतञ्जलिः संस्कृतं सर्वेषु प्रदेशेषु अपि व्यवहारे आसीत् इति लिखन् के शब्दाः कस्मिन् प्रदेशे आधिक्येन प्रचारे आसन् इति लिखति। महर्षि पतञ्जलि उनके भाष्य के पहले अध्याय में लिखते हैं, संस्कृत भाषा सब प्रदेशों में व्यवहार भाषा थी। फिर किन प्रदेशों में किन शब्दों का प्रचार अधिक था, इसकी भी चर्चा करते हैं। महर्षि पाणिनि भी अष्टादशी में छंदसी भाषायांच इति दो प्रकार के शब्दों का विवेचन करते हैं। भाष्यकार पतंजलि उस पर लिखते हैं, अथ शब्दानुशासनम्। केषां शब्दानां? तर्हि लौकिकानां, वैदिकानां च। यहाँ लौकिक शब्द यानी भाषा शब्द, जिनका लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। वैदिक शब्द यानी वेदों के शब्द, यानी छंद के शब्द। व्याकरणम् इत्यस्य व्याख्या लिखिता अस्ति, प्रयुक्तानाम् इदम् अन्वाख्यानम्। मतलब है, समाज में लोग जिन शब्दों का जैसा प्रयोग करते थे, वह देखकर व्याकरण के नियम लिखे गए हैं। पहले भाषा का उपयोग होता रहा, बाद में उसका व्याकरण लिखा गया। इसलिए ऐसा भी कहते हैं, प्रयोग शरणाः वैयाकरणाः इति।
2: अहम् यूट्यूब मध्ये एकाम् कथाम् श्रुतवती। तत्र भोजराजा और लकड़हारे का संवाद संस्कृत में सुनाया है। रोचका कथा अस्ति सा। कृपया वदतु ताम् कथाम्।
1: सम्यक् स्मारितम् भवत्या। श्रुण्वन्तु, कथा एवम् अस्ति। एकदा भोजराजा शिबिकायाम् उपविश्य कुत्रापि गच्छन् आसीत्। शिबिका याने पालकी। शिबिका वाहकः श्रमेण श्रान्तः स्यात् इति मत्वा सः शिबिका वाहकं पृच्छति, भोः दण्डः बाधति किम्? तदा शिबिवाहकः वदति, दण्डः न बाधते राजन्, यथा बाधति बाधते। अत्र बाध धातु आत्मनेपदी, अतः बाधते इति वक्तव्यम् आसीत्। परन्तु भोजराजा बाध धातोः परस्मैपदिनः इव प्रयोगं कृत्वा बाधति इति उक्तवान्। इसलिए पालखी ढोने वाला बोला, राजन, पालखी का दंड मुझे उतनी पीड़ा नहीं देता जितना आपके बाधति शब्द का प्रयोग देता है। दंडह न बाधते राजन, यथा बाधति बाधते। इस कथा से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि श्रमिक लोग, पालखी ढोने वाले लोग भी भोज राजा के काल में संस्कृत जानते थे और संस्कृत बोलते थे। अब संस्कृत भाषा व्यवहार भाषा नहीं रही। इसके कारण बहुत होंगे, कुछ ऐतिहासिक, कुछ सामाजिक, कुछ वैयक्तिक भी। मगर भाषा फिर से व्यवहार में लाने का दायित्व तो अपना है, और भाषा फिर से व्यवहार में लाने के लिए प्रमुख साधन है संस्कृत संभाषण। इसीलिए गीतकार कहते हैं, पठत संस्कृतम्, वदत संस्कृतम्, लसतु संस्कृतम् चिरम्, गृहे गृहे च पुनरपि। पठत संस्कृतम्, वदत संस्कृतम्। अस्तु, इदानीम् अद्यतन प्रश्नः, किम् संस्कृतं पूर्वं व्यवहारभाषा आसीत्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु।
0: इदानीं गीताश्लोकपठनम्।
1: एकादशोऽध्यायः श्लोकसंख्या एकादशतः अष्टादशपर्यन्तम्। अध्याय 11 श्लोकसंख्या 11-18। ॐ श्री परमात्मने नमः।
2: ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: दिव्यमाल्याम्बरधरम्।
2: दिव्यमाल्याम्बरधरम्।
1: दिव्यगन्धानुलेपनम्।
2: दिव्यगन्धानुलेपनम्।
1: सर्वाश्चर्यमयं देवम्।
2: सर्वाश्चर्यमयं देवम्।
1: अनन्तं विश्वतो मुखम्।
2: अनन्तं विश्वतो मुखम्।
1: दिवि सूर्यसहस्रस्य।
2: दिवि सूर्यसहस्रस्य।
1: भवेद्युगपदुत्थिता।
2: भवेद्युगपदुत्थिता।
1: यदि भासदृशी सा स्यात्।
2: यदि भासदृशी सा स्यात्।
1: भासस्तस्य महात्मनः।
2: भासस्तस्य महात्मनः।
1: तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम्।
2: तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम्।
1: प्रविभक्तमनेकधा।
2: प्रविभक्तमनेकधा।
1: अपश्यद्देवदेवस्य।
2: अपश्यद्देवदेवस्य।
1: शरीरे पाण्डवस्तदा।
2: शरीरे पाण्डवस्तदा।
1: ततः सविस्मयाविष्टः।
2: ततः सविस्मयाविष्टः।
1: हृष्टरोमाधनञ्जयः।
2: हृष्टरोमाधनञ्जयः।
1: ततः सविस्मयाविष्टः।
2: ततः सविस्मयाविष्टः।
1: हृष्टरोमाधनञ्जयः।
2: हृष्टरोमाधनञ्जयः।
1: प्रणम्य शिरसा देवम्।
2: प्रणम्य शिरसा देवम्।
1: कृताञ्जलिरभाषत।
2: कृताञ्जलिरभाषत।
1: अर्जुन उवाच।
2: अर्जुन उवाच।
1: पश्यामि देवांस्तव देवदेहे।
2: पश्यामि देवांस्तव देवदेहे।
1: सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्।
2: सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्।
1: ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्।
2: ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्।
1: ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्।
2: ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्।
1: अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्।
2: अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्।
1: पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।
2: पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्।
1: नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्।
2: नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्।
1: पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
2: पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
1: किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च।
2: किरीटिनं गदिनं चक्रिणञ्च।
1: तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्।
2: तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्।
1: पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्।
2: पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्।
1: दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।
2: दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्।
1: त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्।
2: त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्।
1: त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
2: त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्।
1: त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता।
2: त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता।
1: सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
2: सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली गणधुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: व्यस्तता का महत्व. कहा जाता खाली मन शैतान का घर. सच बात भी यही है, जो किसी काम में व्यस्त ना हो तो उसका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है और उल्टी सुलटी बातों में मशगूल मन उत्पात मचाता है. इससे भला मिलेगा क्या? केवल खामखा का टेंशन ही तो पैदा होगा ना. इससे तो अच्छा किसी रचनात्मक कार्यों में मन और मस्तिष्क को व्यस्त किया जाए, जिससे कि समय और शक्ति की बचत हो. सचमुच जो रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहता है वो ही मस्त यानी तनाव मुक्त जीवन का अनुभव करता है. समय का सदुपयोग कर शक्ति और संपत्ति की बचत कराने वाला जादुई गुण है व्यस्तता. व्यस्तता यानी किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगे रहना, मन बुद्धि और इंद्रियों को निरंतर लाभदायी कार्यों में जोड़े रखना, दिनचर्या में खुद को फायदेमंद कामों से व्यग्र कर लेना अथवा नए नए क्रियाकलापों में मगन रहना भी व्यस्तता है. साधारण से कार्यों में भागदौड़ करने से चुस्ती पैदा होती है और आलस कोसों दूर भाग जाता है. तन मन की सोई हुई सुप्त ऊर्जा भी जाग उठती है, शरीर की सेहत भी बनी रहती है और इसी कारण रोग और बाद में महंगे इलाजों से भी बचाव होता है. जो इंसान खाली रहता है वो कोई न कोई उठा पटक कर खुद और दूसरों के लिए समस्या बन जाता है. लेकिन व्यस्त रहने वाला कार्य में मगन रहने से बेवजह की बिना सिर पैर की बातों से परे रहता है. उसका जीवन दूसरों के लिए मिसाल होता है मिसाल. सही मायने में व्यस्तता समय का कदर करना सिखाती है और जवाब में समय और समाज भी व्यस्त व्यक्ति की कदर करता है. ऐसे व्यक्ति के पास फालतू बातों करने के लिए कोई फटकता नहीं, जिससे वो लड़ाई झगड़ों की नौबत से भी बच जाता है. लेकिन खाली रहने वाला केवल बोझ होता है. भाई कहते भी है ना, काम का न काज का दुश्मन है अनाज का. ऐसे व्यक्ति को पग पग पर अपमान और अपयश का भागी बनना पड़ता है. व्यस्तता का गुण उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ इंसान को इज्जत शोहरत संपत्ति का मालिक भी बनाता है. अतः व्यस्त रहिए, मस्त और चुस्त बनिए और तनाव को दूर भगाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.
0: मनात भक्ती, हृदयात करुणा आणि कर्मात प्रामाणिकपणा असेल तर जीवनात आनंद आणि समाधान आपोआप प्राप्त होते. ईश्वरावर विश्वास ठेवा, प्रत्येक संकटातून मार्ग हा नक्कीच सापडतो. आता वेळ झालेली आहे आणखीन एक भक्तिगीत ऐकण्याची. तुम्ही ऐकत रगणधुनी 90.4 FM KLE गणेश भक्तिमय सकाळ.

0: वेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गणसु पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
3: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
2: श्री सिंह ने कहा कि विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
4: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
5: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में

0: करे,
1: जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्य ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से

0: में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के एल ई कनसु। केली कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
2: कैंसर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
1: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कैंसर हॉस्पिटल।
2: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येथे।
1: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कैंसर हॉस्पिटल।
2: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कोलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
1: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
2: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC च्या पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येथे।
1: फोन नंबर 08312552500 आणि 247377।
2: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
1: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येथे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। अभी हम सुनने जा रहे केले फार्मा औषधीय ज्ञान ये सीरीज प्रोग्राम।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको दवाइयों और स्वास्थ्य जीवन शैली के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन, जीवन भर अपने हृदय की सुरक्षा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम रमेश भंडारी है। मैं केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगावी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य। बहुत से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल शब्द सुना है, लेकिन हर कोई यही नहीं जानता कि ये क्या है और इसका क्या योगदान है हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी युक्त पदार्थ है, जिसकी हमारे शरीर को हार्मोन, विटामिन डी और कोशिकाओं को झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा, विशेषकर खराब कोलेस्ट्रॉल, बहुत अधिक हो जाती है, तो यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में जमा होने लगता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार होते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह धमनियों की दीवारों में जमा होकर प्लेग बना सकता है। HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, यह रक्त से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड रक्त में पाए जाने वाले एक चर्बी का एक अन्य प्रकार है, जिसकी अधिक मात्रा भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है। समस्या यह है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल के सामान्यतया कोई लक्षण नहीं होते। व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ दिखता है और स्वस्थ महसूस कर सकता है, जब तक कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर घटना न हो जाए। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्त परीक्षण अत्यंत आवश्यक होते हैं। किन लोगों को अधिक जोखिम होता है? जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को निम्न चीज बढ़ाते हैं। फर्स्ट, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, परिवार में उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग का इतिहास होना, और बढ़ती आयु से भी ये कोलेस्ट्रॉल का जोखिम बढ़ता है। अपने जोखिम कारकों को जानना समय रहते उचित कदम उठाने में सहायता करता है। जीवन शैली में बदलाव की भूमिका। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण की सबसे मजबूत नींव एक स्वस्थ जीवन शैली है। हृदय के लिए लाभकारी खाना खाए, ऐसे खाद्य पदार्थ चुने जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करे, जैसे कि भरपूर मात्राओं में फल और हरी सब्जियां लें, साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और गेहूं लें, दालें और बीन्स जैसे राजमा आदि लें, सीमित मात्रा में मेवे और बीज का आहार लें, मछली तथा कम चर्बी वाले प्रोटीन स्रोत लें। इन चीजों का सेवन करना कम करिए, नहीं तो कम से कम सेवन करिए, जैसे कि ज्यादा तली भुनी चीजें, पैकेट वाले फूड और पैकेट वाले खाना, ट्रांस फैट युक्त बेकरी उत्पादन, अत्यधिक लाल मांस और प्रोसेस्ड मांस, मीठे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स को अधिक से अधिक कम करने की कोशिश करें। याद रखें, खान पान में किया गया छोटा सा बदलाव आगे चलकर बड़ा और सकारात्मक असर दिखाता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहे तो रोजाना एक्सरसाइज खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। दिन में कम से कम 30 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखें, जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना। याद रखें, आपका हर एक कदम मायने रखता है। शुरुआत में भारी कसरत करने से ज्यादा जरूरी है कि आप इसे रोज की आदत बनाएं। तीसरे नंबर पे है स्वस्थ वजन बनाए रखना। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो उसको सिर्फ 5-10% कम करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल सुधर सकता है और हृदयघात जैसी बीमारियों से काफी खतरा कम हो सकता है। चौथा नंबर पे आता है तंबाकू से दूर रहे और शराब का सीमित सेवन करें। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और धमनियों में प्लेग बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। धूम्रपान छोड़ना आपके हृदय के लिए सबसे लाभकारी निर्णय में से एक है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे सीमित मात्रा में और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही करें। तो तीसरा सवाल आता है, दवाइयों की आवश्यकता कब पड़ती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या केवल जीवन शैली में बदलाव लाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया जा सकता है? कुछ लोगों में इसका उत्तर हाँ हो सकता है। लेकिन निम्न परिस्थितियों में दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि पहले से हृदय रोग होना, मधुमेह, डायबिटीज, नहीं तो शुगर होना, खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होना, परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास रहा हो, तो इन परिस्थितियों में दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवाइयां का नाम है स्टेटिन्स। ऐसा नहीं है कि यही स्टेटिन्स लेना है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक के खतरे से काफी हद तक टाल देता है। मरीज की हालत और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हुए डॉक्टर कुछ दूसरी दवाएं भी लिख सकते हैं। इसलिए कभी भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना किसी असफलता का संकेत नहीं है। यह दवाएं आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं के सुरक्षा के लिए प्रभावी साधन है। दवाओं का नियमित सेवन क्यों आवश्यक है? एक सामान्य गलती यह है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुधरने पर लोग दवा बंद कर देते हैं। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल इसलिए नियंत्रित होता है क्योंकि प्रभावी ढंग से दवा काम कर रही होती है। चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा बंद करने से कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ सकता है और हृदयाघात जैसे रोग का खतरा भी आमंत्रित हो सकता है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा चिकित्सक के निर्देश अनुसार करें और किसी भी समस्या या दुष्प्रभाव के बारे में उनसे चर्चा करें। जीवन भर अपने हृदय का ख्याल रखें। हृदय स्वास्थ्य कोई अल्पकालिक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन भर की यात्रा है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है, जैसे कि अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जानें, स्वास्थ्य आहार अपनाएं, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, धूम्रपान से बचें, चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लें, समय समय पर स्वास्थ्य जाँच कराते रहे। निष्कर्ष अंत में, उच्च कोलेस्ट्रॉल एक जोखिम पूर्ण कारक है क्योंकि इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली और आवश्यकता पड़ने पर उचित दवाइयों का के संयोजन में हम हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते है। याद रखे, आज कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने का मतलब है जीवन भर के लिए दिल को सुरक्षित रखना। मेरी बातें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ हृदय की कामना करता हूँ। अपने कोलेस्ट्रॉल के आंकड़ों को जानिए, अच्छी आदतें अपनाइए, डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयाँ लीजिए और अपने हृदय को वह देखभाल दीजिए जिसका वो हकदार है। स्वस्थ हृदय जीवन भर का अमूल्य निवेश है। धन्यवाद।
0: अब तक हम सुन रहे थे केली फार्मा औषधीय ज्ञान ये सीरीज प्रोग्राम। यह है केली फार्मेसी कॉलेज बसवन कुर्ची बेलगावी, इनके सहयोग से प्रस्तुत हुआ कार्यक्रम। आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE गणसु। नमस्कार।
2: डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल नेहरू नगर बेलगाम, 24 आवर्स ऑफ फ्री सर्विसेज फॉर ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट्स, फ्री ईसीजी, फ्री एक्सरे, फ्री सोनोग्राफी एंड फ्री लैब सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द नीडी पेशेंट्स, जनरल ऑपरेशंस, कैटरेक्ट एंड सी सेक्शंस आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट, मोर देन 70 लैक्स ऑफ ओपीडी पेशेंट्स एंड 6 लैक्स ऑफ आईपीडी पेशेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड बाय केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे चैरिटेबल हॉस्पिटल, अराउंड 3 लैक्स ऑफ फ्री सर्जरीज, 85,000 प्लस फ्री डिलीवरीज, 45,000 plus free cataract operations have been conducted. To avail the free services and treatments, please contact 99726-91578 and 77954-35314.
3: One Life, Ambika Infra Build and Core Developers, the new landmark of Belagavi. Are you ready to witness a new landmark in luxury? Introducing the city's largest and most ambitious gated community, Ambika One Life, One Care. This isn't just another residential project. It represents a monumental shift in how our city lives. We are offering a sprawling paradise meticulously designed for those who refuse to settle for anything but the absolute best in modern living. This grand vision is brought to life through a prestigious joint venture between Core Developers and Ambika Group. Group. By combining decades of industry expertise and a shared passion for excellence, this partnership ensures that every square foot of your home is built with uncompromising quality. Our commitment to total transparency and the highest standards of modern engineering provides you with a home that is as sturdy as it is beautiful. Located at the elite 9th Cross, Bhagyanagar, this massive development features 200 luxury flats, creating a vibrant city within a city. Residents will enjoy ultimate peace of mind within a secure, gated environment surrounded by world-class amenities and a community of like-minded families. At this scale, the luxury is larger, the gardens are greener, and the lifestyle is truly unmatched in the region. The future of Belagavi is here and your place in it is waiting. Don't miss the opportunity to own a home in the city's most talked about address where care meets comfort. Call us today at 776-047-7279 or visit our site office at Ambika Platinum to book your dream flat. Ambika One Life, One Care. It is the biggest lifestyle statement in town.

0: माँ बनने में हो रही है देर, इंतजार है खुशखबरी का। देयर इज वन नेम यू कैन ट्रस्ट, केली फर्टिलिटी सेंटर विद साइंस, सोल एंड सेंसिटिविटी। जिंदगी को दो नई शुरुआत केली आईवीएफ के साथ। आज ही विजिट करें केली फर्टिलिटी सेंटर, ओपीडी नंबर 97, शरावती सेकंड फ्लोर, केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड एमआरसी बेगावी। फोन नंबर 08312551530 एंड 247377 एक्सटेंशन 1530।
1: Seasons change, but your brilliance is timeless. P&G brings you the exclusive change of season offer.
2: Now get an incredible discount of 10,000 rupees per carat on the purchase of stunning diamond jewelry. Also enjoy up to 20% off on making charges of gold jewelry and a flat 20% off on making of silver.
1: Offer valid till 31st July 2026. Hurry, visit to Messrs. Purushottam Narayan Gadgil, Seraph and Dwellers today. Terms and conditions apply.

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणु ध्वनि 90.4 FM। एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, जैसे ही हम स्पेशल प्रोग्राम का नाम सुनते हैं, हम उत्सुक हो जाते हैं कि हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज कौन से मेहमान हैं। तो आज हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी वीणा बहन जी। ये एक सीनियर राजयोग टीचर है। ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर सिरसी की इंचार्ज है। इन्होंने MA सोशियोलॉजी और MSc काउंसलिंग किया हुआ है। यह ब्रह्मा कुमारी से 1977 से जुड़ी हुई है। इन्होंने अलग अलग TV चैनल्स पर बात की है। पीस ऑफ माइंड चैनल पर इनके श्रीमद् भगवद गीता पर 360 से भी ज्यादा एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए हैं। और आज वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट इस विषय के ऊपर मार्गदर्शन करने वाली है। नमस्ते और वेलकम।
1: नमस्ते।
0: सबसे पहले वीणा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस क्या है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई अवस्था है, और ये किस उम्र में हो सकता है?
1: वैसे तो आजकल चारों ओर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, तो स्ट्रेस देखते देखते जैसे आपने पूछा, कईयों के मन में ये आ जाता है कि जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे स्ट्रेस भी एक बीमारी है। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेस एक मेंटल स्टेज है। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेस को समय पर मैनेज नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं।
0: ओके।
1: और स्ट्रेस क्या है, इसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन हम लोग सुनाते हैं किसी बहुत अच्छे ऑथर का है। स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ पेन विच कम्स टू टेल यू देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। कुछ बदलाव होना जरूरी है। जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव जरूरी है। इसे सूचक छोटा सा एक दर्द के रूप में वो महसूस होता है, जैसे कि पता ही नहीं हेडेक शुरू हो गया, कोई रीजन नहीं था फिर भी हेडेक है, या बेहजमी अनडाइजेशन शुरू हो गया। क्यों हुआ तो सोचते बाद में चलता है कि कल मैंने थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट मेरा लाइफस्टाइल था कुछ था। इसलिए ये स्ट्रेस कोई भी उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों से बूढ़ों तक। आजकल हम ज्यादा यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, तो बुढ़ापे में भी देख रहे हैं, सब एज ग्रुप में। स्ट्रेस का कोई एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस है फिजिकली रिलेटेड नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये मेंटली रिलेटेड है। और इसको एक साइकोसोमैटिक डिसीज के अंदर इसे लिया जाता है, क्योंकि होता मन में है लेकिन दिखता शरीर में है। इसके कारण इसको साइकोसोमैटिक्स के इसमें लेते हैं। और स्ट्रेस अपने ही विचारों के श्रृंखला में होने वाले एक टकराव है। जैसे कि स्ट्रेस जुड़ा हुआ है मन से। मन में कई सारे विचार चलते हैं, जैसे कि सकारात्मक या पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये चारों तरह के विचार जो चलते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स चलते हैं। एक डाटा ये बताता है कि मनुष्य एवरेज एक दिन में करीब 30,000 विचार करता है। उसमें से 2/3 ऑफ द थॉट्स आर वेस्ट।
0: अच्छा,
1: माना ज्यादा से ज्यादा हमारे वेस्ट थॉट्स होते हैं। और वेस्ट थॉट्स और अननेसेसरी थॉट्स जो आते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट्स भी कहते हैं, ये दोनों ज्यादा होने के कारण पॉजिटिव थिंकिंग कम हो जाता है। इसके कारण नेसेसरी थॉट्स को हम भूल जाते हैं। जैसे कि सब्जी बनाई, नमक डाला कि नहीं डाला, है ना, छोटी छोटी। बच्चा बैग पैक कर रहा है, जो नोट्स डालना चाहिए था उसके बदले दूसरा डाल दिया। ऐसे बिकॉज ऑफ वेस्ट थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, ये ट्रैफिक में ना नेसेसरी थॉट्स रह जाते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं।
0: जी हाँ। मैं अगला ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस के मानसिक और शारीरिक परिणाम क्या है?
1: जी, वैसे तो ये उद्भव होता है मन में, विचार तो मन में उद्भव होते हैं, लेकिन ये सोशली जुड़ी हुई थॉट्स है, जैसे कि कोई समाज के बदलाव के कारण फाइनेंशियली कुछ आगे पीछे हो गया, हलचल हो गया, या शरीर में कोई बीमारी आ गई। हम लोग आजकल एक बात सुनते हैं, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है। ये आपने सुना होगा, मुझे BP है इसलिए गुस्सा आता है, लेकिन ये रॉन्ग थिंकिंग है। गुस्सा करते हैं इसीलिए BP हाई हुई है ना। ऐसी जो हमारी गलत फहमियां हैं, ऐसे कारण मन, ये मानसिक भी है और शारीरिक भी है। होता मन में है लेकिन उसका इम्पैक्ट, इफेक्ट सारा शरीर में दिखाई देता है। जैसे कि छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल एसिडिटी हो रहा है। हम सोचते कुछ खाने के कारण नहीं, खाना केवल खाना कारण नहीं है। अभी एग्जाम शुरू होगा, तो बच्चे एसिडिक हो जाएंगे, माँ बाप एसिडिक हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, लूज मोशन शुरू हो जाएगा। कोई बाहर का कारण नहीं होगा, लेकिन मन के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसीलिए इसको तनाव, मानसिक जो उद्वेग है, व्याकुलता है, अनेक शब्दों से संबोधित करते हैं, लेकिन है ये मन में उत्पन्न होता है, लेकिन बाहरी कारणों से भी उत्पन्न होता है और उसका असर ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं 80% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन, WHO के अनाउंसमेंट के प्रकार है ना, 80% ऑफ डिसीज अप टू कैंसर, उसका भी रीजन कई बार मेंटल स्ट्रेस
2: होता है
1: जी।
2: अब समझो हमें कोई भी तकलीफ है, शारीरिक मानसिक, कभी भी इंसान को तकलीफ होती है तो सबसे पहले हम खुद उसकी उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं अपनी समझ के अनुसार, और फिर हम कुछ घरेलू नुस्खे आजमाते हैं
1: जी।
2: तो अगर किसी को बेसिक लेवल पर खुद का स्ट्रेस मैनेज करना है, खुद से खुद की मदद करनी है या कोई घरेलू इलाज करना है, तो क्या करना चाहिए?
1: पहले तो जिसको अगर पता चल गया स्ट्रेस है, पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कईयों को एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं चलता कि मुझे स्ट्रेस है
2: जी।
1: वो नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं। स्ट्रेस को फाइंड आउट करें, मुझे स्ट्रेस है, पहले एक्सेप्ट तो करें मुझे स्ट्रेस है। फिर उसके बाद वो जो स्ट्रेस के रीजंस हैं, जैसे कि आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके बिहेवियर से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा हट जाऊं वहां से ना, सामने ही खड़ा होकर मुझे क्यों इरिटेट होना है। ऐसे थोड़ा सा हम छोटे छोटे, या तो फिर सिंपली क्या कह सकते हैं, हम जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो थोड़ा पानी पी ले, कुछ कर ले और अपने आप को शांत करें। एक्सेप्ट, सत्य को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो स्ट्रेस होना कम हो जाता है हमारा, और उसके हम आदती हो जाते हैं। ऐसे स्टार्टिंग में हम ट्राई कर सकते हैं अपने आप से, छोटी छोटी बातों में। फिर आगे चलकर भी अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हुआ तो हम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मेरा अनुभव ये कहता है, जब मनुष्य स्ट्रेस में होता है या तो वो चिल्लाता है या तो चुप हो जाता है। ये दोनों बहुत गलत है। चिल्लाने से और इरिटेशन बढ़ेगा
2: जी।
1: चुप रहने से सप्रेशन होगा, मन को दमन करते हैं
2: जी।
1: इसलिए जितना हो सके जब स्ट्रेस है तो हम नॉर्मल रहने का अभ्यास करें, स्ट्रेस के प्रभाव में ना आए, तब हम स्ट्रेस को मैनेज करना अपने आप में कर सकते हैं।
2: अगर ये हम खुद से नहीं कर पा रहे, खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं
1: जी,
2: तो हम कहाँ से मदद ले, किससे मदद ले?
1: अभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आती है, जरूरी भी है। हमारे पास कुछ हम क्वेश्चन एरियाज रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ये टिक आउट करो, इससे आपका स्ट्रेस लेवल पता चलेगा। अगर स्ट्रेस लेवल ओनली 10% है तो इट इज मैनेजेबल, खुद में कर सकते हो। उससे ज्यादा है तो आपको किसी का मदद लेना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपके दिल को हल्का करे, या तो फिर स्ट्रेस मैनेज करने के कुछ फिजिकल, कुछ इंटरनल मेथड्स है, उसको अपनाओ। फर्स्टली स्ट्रेस मैनेज करने का पहला तरीका है बी पॉजिटिव। अरे मुझे टेंशन है। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपके ऊपर बर्डन है, वर्कलोड ज्यादा है, वो तो है ही, आप बार बार अगर कहते रहोगे मेरे वर्कलोड ज्यादा है, मेरा वर्कलोड ज्यादा है, तो वो आपको 10 times ज्यादा लगेगा। डोंट रिपीट योर प्रॉब्लम्स, करने से भी टेंशन ज्यादा होता है
2: जी।
1: उससे ज्यादा है, अगर हमको टेंशन कम करना है तो हमारे मन को डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है उस काम से। और वॉकिंग इज अ बेस्ट रेमेडी टेंशन मैनेज करने का। वो भी वॉकिंग करते समय सिंगल वॉकिंग करें, किसी से बातें करते नहीं
2: जी।
1: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉकिंग का एक डेफिनेशन है ट्यूनिंग विद द नेचर। जितना हम नेचर से ट्यूनिंग करेंगे उतना टेंशन कम होगा। और जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करने वाली है मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को अगर अच्छी तरह से हम डिफाइन करें, इट इज सेल्फ सुपरविजन है, खुद को देखना है और खुद के लिए थोड़ा टाइम देना है। और हम मेडिटेशन के लिए एक बहुत सुंदर डेफिनेशन सुनाते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज मेडिटेशन।
2: यस,
1: है ना, अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन दो। हम टेंस आउट तब होते हैं जब हम दूसरों को देखते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, हम इरिटेट होते हैं। है ना, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है हमारा, इसलिए भी हम स्ट्रेस होते हैं, तो उसको थोड़ा कम करें। और इम्पॉर्टेंट क्या है, जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना जब हम सीखते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब फैमिली में 3-4 लोग हैं, समझिए किसी के पति गीला टॉवल सोफे पे छोड़ता है, बार बार वो छोड़ता है तो पत्नी इरिटेट होती है, उसके कारण घर में थोड़ा सा तनाव बढ़ता है, वो बड़ा बन जाता है फिर। लेकिन एक्सेप्टेड, जब वो बदल नहीं रहा है तो माता क्यों गर्म कर रहे हो
2: जी,
1: है ना। थोड़ा सा हमें ही अपने आप को बदलने का नेचर बदला बना लेंगे तो स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं। और रोज का आदत बना लेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करने का, 5 मिनट सवेरे शाम थोड़ा टाइम देंगे तो स्ट्रेस मैनेज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस मन से रिलेटेड है, मन खुद से रिलेटेड है, जिसको आत्मा कहते हैं, है ना। अगर हम अंदर से शांत हो जाएंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा।
2: कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर,
1: डेफिनेटली।
2: तो स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, कि वो हमारी स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए कि हमारे जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम आए या आए ही ना।
1: बिल्कुल, पहले घर के वातावरण को हमें पॉजिटिव बनाना बहुत जरूरी है। घर ऐसा जगह है मनुष्य का, बाहर कितना भी टेंशन हो घर में आके मनुष्य सुकून पाता है। अगर आजकल हमारे घरों में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, प्लास्टिक बेस्ड जो भी चीजें हैं ना, ये सब नेगेटिव है। हमारे घरों में वो ज्यादा होता ही है आज के अनुसार, इसलिए घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, इसके लिए थोड़ा सा ओम का उच्चार करना खुद से, ताकि घर में एक माहौल अच्छा हो और मुझे भी अच्छा फील हो। प्रोनाउंसिंग ओमकार इज अ बेस्ट मेथड टू डेवलप द पॉजिटिव एनर्जी, इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी समस्याओं का प्रिवेंशन हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अटेंशन देना, सभी सोए हुए हो, मैं उठ के ओंकार करूं, उनको डिस्टर्ब करूं, फिर ओंकार से नेगेटिव ऐसे नहीं होने चाहिए, सोच के करना चाहिए। फिर घर में या बाहर में हम अपना नेचर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए, कुछ भी हो जाए हम उसे पॉजिटिव ले ले। देखिए, कुत्ता भौंकता है तो हम वापस भौंकते तो नहीं है, है ना। इसी तरह कोई गुस्सा कर रहा है, कोई इरिटेट करा रहा है मुझे, लेकिन मैं क्यों हो जाऊं। इसलिए खुद को संभालना जब हम सीखते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं
2: जी।
1: क्योंकि एक बार शुरू हो जाता है ना, आग लग जाता है तो बुझाना मुश्किल हो जाता है, लगने ही ना दे। ऐसे हम नेचर बना लेंगे तो इजी हो जाएगा।
2: स्ट्रेस मैनेज करना क्यों जरूरी है?
1: बहुत अच्छी बात है। आजकल हम क्या देख रहे हैं दुनिया में, स्ट्रेस पास करने का एक नेचर देख रहे हैं। हायर ऑफिसर से कुछ लेटर आया, उसने अपने कोलीग्स में ट्रांसफर कर दिया टेंशन, कोलीग्स ने अपने सबॉर्डिनेट्स में ट्रांसफर कर दिया, सबॉर्डिनेट्स ने कर्मचारियों में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे करते जाते काम बनता नहीं है,
2: मल्टीप्लाई।
1: इसी तरह स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं करेंगे तो स्ट्रेस का जो बढ़ाव है उसे हम रोक नहीं सकते। एक बार स्ट्रेस बेस्ड एनवायरमेंट बन गया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना, छोटा है तभी उसे वहां ही समाप्त करना बहुत जरूरी है। हाँ, हम ये मान के चल सकते कि हम 100% स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि चारों ओर स्ट्रेस ही है। लेकिन एक बात हम सोचे, कोई मछली बेच रहा है, मुझे लेना नहीं है, ठीक है, वो सस्ते में दे या फ्री में, मैं तो नहीं लूंगी, मुझे लेना ही नहीं है,
2: लेना ही नहीं है।
1: इसी तरह कोई स्ट्रेस बेच रहा है, मुझे लेना नहीं है, अगर मैं अंदर से स्ट्रांग हूं, मुझे लेना नहीं है, जब मैं अपने आप से फिक्स कर लेती हूँ मुझे स्ट्रेस लेना नहीं है, देने वाला चाहे कैसे भी दे मैं नहीं लूंगी, लेने वाला स्ट्रेस लेना बंद करे, देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी। इससे क्या होगा, हमारी डिसीज भी कम होंगे, टकराव कम होगा, माहौल बदलेगा, मन शांत रहेगा, घर शांत रहेगा, तो हम जीवन क्यों जीते, केवल पैसे के तो लिए नहीं जीते ना, तो खुशियां हम अनुभव कर सकते हैं। खुश रहने के लिए, जिंदगी को वाह-वाह बनाने के लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हम स्ट्रेस कैसे पास करते हैं और कैसे उसे रोक सकते हैं
1: जी।
2: अब एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये हमने स्ट्रेस की बात की, अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर बात की, जब चलो हमने हम इतने जागरूक हो गए और हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरीके से, पर हमारे आसपास, जैसे ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पर, हमारे आस पड़ोस में, समाज में हम देखते हैं कि लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, वो तकलीफ में है, तो उनकी मदद हम कैसे करें?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन सब के लिए एक शुभ भावना रखें कि जैसे मैं स्ट्रेस से बाहर आ रही हूँ या मैनेज कर रही हूँ, वैसे ये भी करें। ये सबसे ज्यादा पहले ये पहुंचता है, हमारा ये जो बेस्ट विशेस है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ये पहुंचता है, तो पहले इसे फैलाने दे। दूसरा, जो स्ट्रेस में है उनके साथ हम बातें करें, अगर हमारे नज़दीक के हैं, अगर हमारी बातें वो सुनते हैं तो हम उनसे बैठे बातें करें। कहते बातें भूतों को भगा देती है तो कई सारे भूत भाग जाते हैं, ठीक है। फिर साथ में हम मिलके बैठे, थोड़ा दोनों मिलके मेडिटेशन करें, दिल हल्का करें, फिर ऐसी जगह जहां से मुझे शांति मिली उनको भी ले जाए साथ में, और देखा अनदेखा ना करें। ये हमारा काम का चीज नहीं है, उनका है वो संभालने दो, ऐसे ना करें, क्योंकि हम, आपने जैसे कहा, हम सोशल एनिमल है, हमको सोसाइटी में रहना है, तो सबके स्ट्रेस का भी हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, तो उससे बाहर एक तो सबके प्रति हमारी शुभ भावना हो, सब खुश रहे, ये बहुत काम करता है। और उनको हम मदद किस लेवल पे कर सकते हैं, समझो कोई भूख के कारण परेशान है तो हम सदा उसका भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन कमाई का रास्ता दिखा सकते हैं हम उनको, है ना, ऐसे हम छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं।
2: थैंक यू सो मच वीना बहन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और स्ट्रेस की तरफ देखने का हमारा एक नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, और उसमें आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आई एम वेरी श्योर हमारे लिसनर्स जो है उनको भी आपकी बातें सुनकर

0: 904। इसी के साथ मैं आरजे स्वरा आप सभी से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और स्ट्रेस में खुद की और औरों की सभी की मदद कीजिए।
1: हेलो एंड नमस्कार, सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेनो ध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने।

दूसरा जो सॉफ्ट स्किल है जो बेहद इम्पॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वर्बल हो या रिटन हो, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान की लाइफ में, क्योंकि ये आपके काम को दर्शाती है, ये आपके विचारों को दर्शाती है, ये आपके मन में क्या चल रहा है वो सामने वाले के मन तक पहुंचाती है। इसलिए अगर आप बताओगे नहीं, दर्शाओगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ सॉफ्ट स्किल। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा में सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।

आपने अपने घर के बड़ों को बात करते हुए सुना होगा कि हमारे जमाने में तो ये सब नहीं था, पर ये हमने वक्त के साथ सीखा। दैट मीन्स उन्होंने वक्त के साथ जो नई चीजें आ रही थी उनको अडैप्ट किया। अडैप्टेबिलिटी इज अ वेरी क्रूशियल सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होगे और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे, कुछ साल के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके साथ साथ आपको अपने आप को अप टू डेट करना पड़ेगा। अपने आप को नई नई जो चीज़ें आ रही है प्रोफेशन में, नए नए जो इम्प्रोवाइजेशंस हो रहे हैं, वो सब आपको सीखने पड़ेंगे। एंड व्हेन यू अडैप्ट ऑल दीज थिंग्स यू रियली प्रोग्रेस। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अडैप्टेबिलिटी को अपनाना होगा। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखोगे, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तो वहीं पे स्टक होके रह जाओगे। दैट्स व्हाई अडैप्टेबिलिटी इज अ वेरी क्रूशियल सॉफ्ट स्किल। ये KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। अब आप कहोगे कि स्वरा, तुम हर एक स्किल के लिए ये कहती हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये है। एक्चुअली हार्ड स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जो मैं बात कर रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, अगर ये सॉफ्ट स्किल आप में नहीं है तो आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस कोई भी कुछ भी मायने नहीं रखता। क्योंकि एक्चुअल में आपका टैलेंट तब दिखता है, या फिर एक्चुअल में आपके टैलेंट की परीक्षा तब होती है जब आप किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये बहुत ही क्रूशल सॉफ्ट स्किल है जो हर एक इंसान में होनी चाहिए, होती है, पर उसकी मात्रा अलग होती है, या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हर एक का नज़रिया अलग होता है। सो यू योरसेल्फ विल हैव टू वर्क ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आगे बढ़ते हैं शो में, कुछ प्यारे गाने सुनाती हूँ। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

कोई भी काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। हमको पता है कि हमारी मेहनत इस काम में कितनी ज्यादा डली है। हमको ये भी पता है कि हमारे आसपास के लोगों ने इस काम के लिए हमें बहुत सपोर्ट किया है। उनके सपोर्ट के बिना हम कोई भी काम पूरी तरीके से नहीं कर सकते। दैट इनडायरेक्टली टीचेस अस टीम वर्क। और एक अच्छा टीम मेंबर होना, एक टीम स्पिरिट हमारे में होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम टीम वर्क सीखते हैं या टीम को अच्छे से मैनेज करना, टीम के साथ रहना, सबको साथ लेके आगे बढ़ना सीखते हैं, तब हम हमारे करियर में और हमारी पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी सक्सेस एक इंसान की अकेले की नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसे पुश किया है और आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। सो टीम वर्क इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा। मैं कुछ ही पलों में लौट कर आ रही हूँ।

कहानी है कि वो दर्शाती है आप कितने टैलेंटेड है, आप कितने लाइवली है। सो क्रिएटिविटी इज द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।